पंच समाए गुरमत पाएक तखत बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोवा तत विचार जह मथरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो ऐसे दीन दयाल सतगुरु शहीदां दे सिर ताज बाणी के बोहत शांति दे पुंज पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे शुभ दिहाड़े गुरता गद्दी उपर विराजमान होए तिना सतगुरां दा गुरता गद्दी गुरपुरब बेअंत संगतां सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना सत्कार नाल मना रहियां हन जथा सकत पेटावां हाजर कर रहियां हन सतगुरु जीओ सरबत साध संगतां दियां हाजरियां तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनियां अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां हे नमानियां दे मान नतानियां दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबद चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।

जो गलत ले पाए, चौकड़ मुलाया बह चौके पाया, सिखा कं चढ़ाइया ओह मुआ हो चढ़ पया, वे गया महला पहला।

दयाल कृपा करे तां साईकार पुराए से सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम मनाए से हुकम मनया होए परवान तां कसमे का बहल पाए से कसमे पावे सो करे मन सो बल पाए से तां दरगे पैंदा जाए से तां दरगे

0: गोबर तरना जाई धोती टिक्का तै जप माली तान ले छा खाई अंतर पूजा पड़ेक ते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छरी बगाएं तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण तिन कर ब्राह्मण पूरे नाग उन पिया वे वही साग कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तो तिक खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर वे प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना देखे चौंका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत फिटे एहो न साडा फिटे तन फिटे फिट करे मन झूठे चली पर हेन कहो नानक सच थई है सच होवे ता सच पाई पड़ी।

के चाकरी जे चले कसमे पाए और मत सुनो कली तू वजो पीत ना खाए कसमे करे बराबरी तेरी गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोए।

गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया तख्त वह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने उपदेश जे दित्ता सतगुरु सो सुनया सिखी कन्ने जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने एह चाल निराली गुरमुखी गुर दिखिया सुन मन पिन्ने वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर साहा पात साहो निह चल चौर छत तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदुआ उगवना हो तै आथवना हो चहो चक्की कियन लुआ एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपना तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया

जैत सरे महला चौथा कर पहला चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियर रतन नाम हर बसया।

जन्म जन्म के किलबिख दुख उतारे गोर नाम दियो रेन लाथा मेरे मान पाज राम नाम सब अर्था गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया बिन नावे जीवन बिरथा रहा बिन गुर मूड पाए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तेन साधु।

0: रंग प्रांगण एक ना जापन करत बार देव सब कुछ जान ला सब तेरे वास तेरा तेरे कर आनंद वधाए तुत कर मान मत्ता तेज अपना आप जा
1: सर्व कला भरपूर दिस जात कथा

रंग प्रंग नेक ना जापन करतवा जिया इंद्र जियो सब कुछ जानदा सब किस तेरे वस तेरा कर पला।

दया गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरिन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सतर हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया फूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनाया देव दैत जक्षन उपजाया आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब दुकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार आपे अपनी बूझो चार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल नाद सांब ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताका कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तहतेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा होए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा
सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, याद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठो तो तपाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहुभेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार का शाड कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार का शाड कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दो तां गावहो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारना।
ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਨੀਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ।

तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो।

मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मिहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया।

गुरु बोलो जी। पंजाब प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तबियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचिहारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो।

जब लो नहीं पाग लिलारी उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनाया। जपिया

चरण शरण गुरु एक पैंडो जाए चल सतगुर कोट पैंडो आगे हुए लेत है एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंबार गुर हित है भावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाव राखै ताहे गुर सर्व निदान दान देत है सतगुर।

सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध। नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है सुख टन गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदी नूर अरसोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठया सो ही है सबना दावी साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठया सो ही है सबना

जिसका तन मन तन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनया दुख सुख में।

बाजे अनहत बानी कहो नानक निहचल कर बांधियो गुर कियो बंधानी प्रगटियो जोत सहज सुख सोभा

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षाढ़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविए, अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह सिर सांद, जिस पास बैठिया सोही है, सवना दावे साहु सजन।

रहाओ, तुमरी कृपा ते मोह मन छूट, बिन सजाए परमाई। आनंद रूप रवियो सब मद्दे, जात कत पिखो जाई।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवा। सदप सुख हर नाम बढ़ाई, और पर साथ नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात नोए दाई दाया खेलै सगल जगत।

अवगुण मेरे। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखख। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाए।

0: नानक रसगुदा रसगुदा।
1: श्लोक महला पहला। कड़ियां सबे गोपियां परकन गोपाल, गहने पौन पानी वे संतर चन सूरज अवतार। सगली धरती मार तन वर्तन सृजन जाल, नानक मुसे ज्ञान बिहुनी। हाय गया जमकान महला पहला।
0: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा झट पाए। वेख लोक सैकर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल। आप जाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन गान, गावन सीता राजे राम। निरभाओ निरंकार सच नाम, जाका किया सगल जहान। सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ, पिनी रहन जना मन चाओ। सिखी सिखिया गुर विचार, नदरी करब लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक, थल वरोले बहुत अनंत। लाटू माधाणिया नगा, पंखी पौंदे लै न सा। सूए चढ़ पवाइए जंत नानक, पौंदे गणत अनंत। बंधन बंध पाए सोए, पै कृत नचै सब कोए। नच नच हसै चले से, रोए उड़ ना जाहि सिद्ध ना होए। नचण कुदण मन का चाव, नानक जन मन पाओ ते ना मन पाओ। पौड़ी ना उतरंदन।

तेरा निरंकार है ना ले नरक ना जाइए जियो पिन सब सदा देखा जिया गवाई है जे लोड़े है चंगा अपना कर पुन हो नी सदाई है जे जरवाना पर हर जरवेश करे दी आई है और रहना पर यह पाई है।

0: राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंड कूड़ माड़ी कूड़ वैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पेनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ बेबी खप होए खार कूड़ कूड़ने वो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जतनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ो बैपूर नानक बखाने बेनती खुदवाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता बन जानिए ज हृदय सच्चा होए कूड़ की मल तरे तन करे हछा धोए सच ता पर जानिए ज सच धरे प्यार नाओ सुन मरे सिया ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए ज जुक्त जाने जियो तरत काए साध कै विच दे करता वियो सच ता पर जानिए ज सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जातम तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सत्सवना होए दारू पाप कड्डे धोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जुद संजय करें प्यार, धर्मी धर्म करें गवावे मंगे मोख दुआर, जति सदावे जुगतना जाने छठ वह करवार, सबको पूरा पे हुए घट न कोई अखे, पत परवाना पिछे पाई ता नानक तो ले जापे महला पहला।
1: वदी सब जग नानक।

सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारन तरन खिन मात्र जाको दृष्ट तारै शब्द हृदय विचारै काम क्रोध खोवै जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बखियाता अहनस ध्यान तावै पलक ना सोवे जियो। जाको देखत दृढ़ जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी।

0: अजय गंग जल टल सिख संगत सब नावे नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पै गयो हरिवंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरमोयो हरिवंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरमोयो।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो रहस्य किए सुरदेव तोह जस जय जय जंपै असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरो के गुर रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दे आयो।
2: जग जितो सत गुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निधान रिद सिद ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अभिनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास कल उचरै तै हर प्रेम पदारथ पायो।
3: श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस कमल माथे पर धरियंग अलख रूप जी रखिया ना जाई साधक सिद्ध सगर सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज केवट गुरु गुर बिन तरया ना कोई गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रहना थाप जोत जगतारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चोह जुग गुर सेवा कर फल रहियं बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखन परनन सतगुरु

कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास बैठियां सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह जिस पास

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद वह मेरी माए सतगुरु।